कल तारण गुरु नानक आया साडे भी हिरदे रूपी जगत दे विच आनंद आया कि नहीं, जे नहीं आया तो किवें आएगा। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया भिखे से फिर गरवास न भरिया। गुरु नानक नु सुनो फिर भिखो। वो लड़ीवार प्रकरण एक निका जिहा शुरू होया है, भाई फिरना ते भाई जोध ये दोवें सिख गुरु नानक बाबा जी को आए ने ते अध्यात्मक मंग मंगी। परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए, नमक ना बसरों की ताक मिल जाए, मन टिक जावे, छे बचन गुरु नानक साहब ने इना दी चोली च पाए ने, तीन बचन आप जी सरवण कर चुके हो, आज चौथे बचन दी वारी है। महाराज जी सेवा लैन सात संगत अवल ते कोई गाह की नहीं बनता, आपां भी गाहक बनना, एक एक चीज नूं सुन के अपने ते टालना। सारा जगत तुहानूं अपना नजर आन लग पेगा जदों परमेश्वर दी प्राप्ति हो गई। सारे ही अपने, सारी जगत अपनी, जगत अपना। किनू धोखा दिया, किदे रफरी करा, किदे नाल बुरा करा, किदे नाल माड़ा करा। उस स्वाद नूं कोई दस नहीं सकिया।

सदगुरु कृपा करे, बख्शिश करे। गुरबाणी की पंक्ति सानू कहती है इसके बारे में।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ये ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ती धर्म दृढ़तांग दागड़ती दिम दिरना, बागड़ती ब्रिते बांग तागड़ती तोम तोम तोम तिरना, दागड़ती दे दे ताल कागड़ती कोम किरना। ये शायद जी ने तराना गाया। तो इसका मतलब है दागड़ती दे दे ताल कागड़ती कोम किरना। इसका अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगानिया और ताना लगानिया। कुम किरना नाल दे दे ताल दागड़ती दे दे ताल के तुसी ताना लगाते हो ताल का ना ख्याल भुल जाए। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना। बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना इस नू कीर्तन कहेंगे। जे राग ते ताल कट दियो बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं है, पाठ है। तो पाठ जड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है। राग और ताल दे विच गायन करना जड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहते दागड़ दी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

अमृतसर सतगुर सतमति जित नाते कौआ हंस होए अमृत सार की अमृत गुर अमृत सार नवधाया सब जाते।

बिसर गई सब बात जब ते साध संगत मोय रहाओ ना को बैरी नहीं देगा ना सगले।

सब में रव रया प्रभ एक है, सब में रव रया प्रभ एक है, सब में रव रया रया रया प्रभ एक है, सब में रव रया।

चार पांच और श्रवण करो। पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब में रव रे आ राव जोग।

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौस, चंद्र कौस, सूर्य कौस, जोग कौस, चार ही पंक्तियां, बिसर गई सब तात्पराई, जब ते सत्संग तुम पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई, जो कब तीनो सो भल मान्यो, इस मत साधु ते पाई, सब मेरा रहा प्रभु कै, देख देख नानक दिखाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने, ए तराना जेड़ा है ए अनकौमा जेड़ियां ने गैर सिखा नू झुका के रख देने वाली बात है। मैं इथे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखां नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा सारे सामने ना कहा, कहिंदे असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए, कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ, ये तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी ये सानू लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कभी सुनी ही नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो, उन्होंने को ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नमस्कार की, इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब। तो तराना श्रवण करना साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवणों प्रकाश ग्रंथ विद्वान ने, कभी आप दर्शन करना।

दे मालक छेवें पातशाह गुरु हर गोबिंद जी दे समय बीबी सुलखणी होई है। बहुतियां थावां ते विचारी गई लेकिन कितों पुत्र दी दात ना मिली। शिवालयां ते भी गई, जोगियां दे मठां विच भी गई, कबरां नूं भी जाके पूजिया, मणि मसाणां विच भी गई लेकिन कितों खरैत ना पई। ताईं किसे ने सुलखणी नूं सरोत पाई, सुलखणीए जे पुत्र चाहुंदी है तां गुरु नानक दे दर ते जा। इस वेले गुरु नानक दी छेवीं जोत मीरी पीरी दा मालक गुरु हर गोबिंद अकाल तखत ते सुशोभित है। तू उना दे चरणां विच जा के बेनती कर ते जो गुरु नानक दे दर ते जा के अरदास करद मंग मंगद ओ कदे फिर खाली नहीं लौटदा। सत संगत बोलो श्री। बीबी सुलखणी जदों मीरी पीरी दे मालक गुरु हर गोबिंद जी दे चरणों विच गई, जा बेनती की थी, सच्चे पातशाह तेरे चरणों विच अरदास है, मैं सारे द्वारे द्वारे डोल आई हां, कितों खरैत नहीं मिली, इक हुण तेरा दर रह गया और तेरे दर दी मैं स्रोत सुनी है, जो तेरे दर ते आउंदा ओ कदे खाली नहीं मुड़दा, मेरी भी चोली विच इक पुत्र दी दात पा दे, इक पुत्र बख्शो। मीरी पीरी दे मालक गुरु हर गोबिंद जी ने नेत्र बंद कीते और जदों अखां खोलियां ते आख्या आ सुलखणीए तेरे भागां विच तां सत जन्मां तक पुत्र लिखिया ही कोई नहीं। सत संगत बोलो श्री। बड़ी उदास बेचारी वापस तुर पई, जा रही ते रस्ते विच भाई गुरदास जी मिल गए, अखां विच आंसू सुलखणी दे। भाई गुरदास जी कहण लगे की गल है बीबी, आ गुरु नानक दे दर ते तां जेड़ा रोंदा होया आउंदा ओ भी हसदा जाउंदा, ते तू क्यों रो रही है? आख्या एक दात पुत्र दी मंगण आई सां, लेकिन अज गुरु नानक दे दर तों भी जवाब हो गया। भाई गुरदास जी कहण लगे साहब जी ने की आख्या? आख्या साहब जी क्यों देन तेरे भागां विच पुत्र है ही कोई नहीं। तां भाई गुरदास जी कहण लगे तां तू बेनती करनी सी जे उत्थे भागां विच नहीं लिखिया ते हुण लिख दियो। सत संगत बोलो श्री। उत्थे भी लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी देण वाला तू ही है। तां बीबी सुलखणी जुगत दसी भाई गुरदास ने। भाई गुरदास जी कहण लगे जदों कल साहब जी साहब जी जाऊंगे ना बाहर घोड़े ते सवार होके, तां फिर तू रस्ते विच बेनती करी। आज बीबी सुलखणी रस्ते ते आके खड़ो गई क्योंकि पता सी कि आज इस रस्तियों मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद जी ने लंघना है। आके रस्ते ते खड़ो गई, जदों साहब जी आए घोड़े ते चढ़े ते बीबी सुलखणी ने चरण पकड़ लए। ओ गरीब निवाज कृपा करो, नाम मेरा सुलखणी, मैं वसदी हां चौबे, अर्ज करेनी हां गुरु हर गोबिंद अगे, अफल जांदी नू कोई फल लगे। सात संगत बोलो श्री। बेनती कर दी हां एक पुत्र दी दात। साहब जी कहन लगे तेनू कल जो क्या सी तेरे भागां विच नहीं। आख्या फिर गरीब निवाज उत्थे भी भाग लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी भाग बनाउण वाला तू ही है ना, जे उत्थे नहीं लिखिया ते हुण लिख दियो। ऐसी जदों प्यार दी बेनती कीती साहब जी बड़े प्रसन्न हो, आख्या चंगा सुलखणीए तेनू पुत्र बख्शिया। बीबी सुलखणी हाथ जोड़ के कहण लगी मेनू बहुतिया ने कहा तेरे घर पुत्र होएगा लेकिन अज तक होया कोई नहीं, हुण मेनू कह ते इतवार नहीं, मेनू लिख के दे के जाओ। साहब जी कहण लगी अच्छा फिर कागज कलम लिया लिख देइए। होर तां कुछ ना मिलिया सुलखणी नू, सामने एक ठीकरी पई सी कड़े दी,
ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਏਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸ਼ਵਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁੰਭ ਹਿਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖੇਗੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਏਕਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁੰਭ ਹਿਲਾਇਆ ਏਕੇ ਦਾ ਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਇੱਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਲੋੜ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਲੋੜ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ

0: गुरमुख रंग चलू लिया,
1: कहो
0: नानक रंग चलून पे है, गुरमुख रंग चलू लिया, मेरा मन तनो भिन्ना, मेरा मन तनो भिन्ना, जन नानक मुस्क

स्वामी, किस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरु सिख की।

0: फिर अजरीफ शरीफ गए अजके फरीद साहब, गुरु नानक साहब ही पाक पटन गुरु नानक साहब नू फरीद साहब मिले, आपो च नी गल्ला होई इतादी ते कलाम उन्हां दे गुरु ग्रंथ साहब च आए। जो मुरशद तारन वास्ते मुरशद ने कहा अच्छा तू आ गया, बड़े प्यार नाल सेवा कीती और सेवा इको ही लगी कि तू इशनान ही करा, लकड़ा सवेरे बालनिया अग बाल के मुरशद नू इशनान करा, उन्हें फिर हुजरे च जाना इबादत वास्ते। जिस तरह गुरु अमरदास जी ने 12 साल लाए ब्यासा तो जल लिया, गुरु अंगद साहब नू इशनान कराया, गुरु 36 साल दा और चेला 62 साल दा, सिर्फ एक गुरु तहरन वास्ते इन्नी सेवा। जे डिग भी पे खड्डी विच जलाई ने कहा, जलाई ने पुछया ए कौन है, जलाई कहन लगी अमरू न थावा, जिन्हू किते था ही नहीं, पर गुरु अमरदास जी कहन लगे मैं ते मुरशद वाला ते था वाला कमलिए तेरा ही कोई नहीं। मैं बेनती करा 12 साल दी भक्ति बहुत है, पर मां ने किन्ने साल लवाए पक्या करन वास्ते। स्टूडेंट एक सबक नू रोजाना रिपीट करदा पर मास्टर कहिंदा फेर पढ़, हैरान हुंदा क्यों पढ़ाउंदा, मास्टर दा मतलब हुंदा जो किते परचा दवे इम्तिहान होए फर्स्ट आवे। तो अज फरीद साहब जी दा अखीरला समा सी, इन्हां 12 साल होर लाए। अज मुर्शिद ने भी ऐसी कला वरताई के मीह ते छखण ते लकड़ां भी भिज गई और डब्बी भी कोई ते फरीद चादरी विंडो खोल के बारी खोल के गलियां विच चिकड़ा ते मीह वर रहा है, कोई कमलिया भेजेगी।
1: ये पावन पवित्र शब्द आसा महला पहला धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया है, जिस शब्द अंदर सतगुरु सानू उपदेश देते हुए एक गल समझा रहे ने। कहते ने हे मनुख हे इंसान जोत वेख जात ना पुछ, क्योंकि साडा संबंध जोत नाल है जात नाल नहीं। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत जोड़दी है। दोनों गल्लां दा ख्याल रखना, जोत पुछण करके निकटता आउंदी है, जात पुछण करके मनुख मनुख तो दूर हो जाता है। हुण ये बचन सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने आख्या नहीं करके दिखाया है,

जानो जोत ना पूछो जाती, जोत वेख पाई जात ना पूछ। क्योंकि जात ने हमेशा तोड़िया जोड़िया नहीं, ते जड़ी जोत है वो एक कर देनी। हुण सतगुरु उपदेश देंदे हुए समझा रहे ने कुछ गल्लां, आपदी चोली पावां।

हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दें तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नूं नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करियो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कढ़े हुए नामदेव नूं धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे कोल आ की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हरिमंदर विच बिठा दिना हाले के जोरा फिर गया पर उना जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे ओथे दे ओथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नाम देव नु मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उना दे दिमाग ओथे दे ओथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हन कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हरिमंदर विच उदों भी बैठे सन नामदेव हरिमंदर विच अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसीं परा हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शिया गुरु अर्जन साहिब ने ते गुरु दा दित्ता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड़दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बोवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दा रूहानी रूह दी खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

गल राम दे नां दी है, पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला रहा। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहने

आनंद प्राप्त हुंदा है, हरेक दुख दूर हो जांदा है और गुरु दी शरण पै के परमात्मा दी सिफत सलाह करनी ही चाहिदी है। साहिब फरमाउंदे हन कि ऐसे गुरु दी उस्तक की

उसने बड़े तरले ले। भोजन छड़ के ना जाओ, आज खुशी का दिन है, मेरे घर लड़का पैदा होया। कहन लगी कुछ भी होवे, असा भोजन नहीं छकना,

से फिटते गुरु बाबे फिट के से फिटे गुर अंगद कीते कूड़े गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे गुर

हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपह आणिया हर तुम वड अगम अगा।

जेबा एक कवन गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कवन गुण कही है जेबा एक तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम हम अज्ञान अल्प मत थोरी तू समरथ वड़ा

निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जे प्रभ तेरो थान, तेरो थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हमें अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले।

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाह, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला हर कृपा।

भक्त रविदास जी का उच्चारण किया होया है। इस दे विच भगत रविदास जी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रेज कर रहे हैं कि ओ प्राणा दा नाथ सानू प्राण जीवन जिंदगी देने वाला प्राणा दा नाथ परमात्मा वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ ओ प्यारा प्राणा दा नाथ वाहिगुरु मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत से किस भक्ति दे द्वारा ओ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। यह सवाल उठाया है किस भक्ति दे द्वारा यानी किस मेथड दे द्वारा किस टेक्निक दे द्वारा किस विधि दे द्वारा किस युक्ति दे द्वारा उसनु मिलन दा रंग राह अते ढंग की है। यह सवाल मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संघ है वो सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी परफॉर्मनेस के नाल भरिया पिया है कि असी इस अपनी जिंदगी अगर कमा लीए, इस वरत लीए तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर